दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

वाह वाह वाह, दिल लगाया था दिल लगी के लिए, बन गया रोग जिंदगी के लिए। और आपके मांग में सितारे हैं, हम तरसते रहे रोशनी के लिए। जी हाँ भाई रिजा साहब, ये भैरवी का वक्त है, ऑफ कोर्स यू आर इन चाइना एंड इट्स 12:30 AM इन द मॉर्निंग। थैंक यू सो मच माय ब्रदर, इट इज योर मोहब्बा एंड इट्स योर फ्रेंडशिप एंड इट्स योर एफिलिएशन विद द कंट्री दैट यू आर ट्यून्ड इन टू आवर रेडियो स्टेशन एंड लिसनिंग टू द प्रोग्राम। शुक्रिया जजाकल्ला आवर चाइना मैन आउट देयर एंड थैंक यू सो मच एडम एंड फातिमा रॉयकर एंड family of Cape Town. I see our Guldasta and Ghazal, you know, following has grown so much. Thank you guys so much. Sabita Sukhdev, yes, my sister. Thank you very much as well for tuning in and enjoying the music. Let's listen to another Ghazal. And this Ghazal was presented by Ghulam Ali Sahib. Woh kehte hain ki Ghazalon ki duniya ki behtaj badshah hai Ghulam Ali Sahib. Lekin unki Ghazal jo hai, Alina Bharti, a lady by the name of Alina Bharti is reciting it. Listen to her. She's recited it absolutely beautifully.

0: अलीना भारती की आवाज थी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। एंड ऑफ कोर्स मेमोरीज कम फ्लडिंग बैक, उनकी यादें आते हैं। गुलाम अली साहब की बड़ी बेहतरीन अंदाज में इन्होंने इस गजल को पेश की थी। एंड यू नो अलीना भारती एज वेल, इट वॉज अ लाइव रिकॉर्डिंग ऑफ हर एंड शी सेंग इट एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल। एंड थैंक यू सो मच आवर डियर आयला बहन, यस आयला बहन, आवर सिस्टर दैट यू नो बीन हैज गॉट अ सैड बिरीवमेंट इन द फैमिली, बट ऑफ कोर्स शी रिमेंबर्स सफी साहब एंड ज़किया अहमद व्हेन शी सेज दिल लगाया है दिल लगी के लिए। यस एब्सोल्युटली वी विल रिमेंबर देम ऑलवेज एज यू आर अवे। सफी साहब यूज़्ड टू डू दिस प्रोग्राम यू नो व्हेन ही वाज अलाइव एंड वी मेक दुआ दैट अल्लाह रब्बुल इज्जत ग्रांट हिम जन्नत अल फिरदौस। शुक्रिया बहन सबिता सिखदेव, आवर सिस्टर टीना नायक ऑफ शेल क्रॉस, एंड रिकी आवर नाइट आवर रिकी भाई, थैंक यू माय ब्रांड। एंड देन वी हैव Rashida and Mehmuna as well have tuned into the program.
1: Solve exciting riddles and unravel a web of suspense and adventure with Hollywood Bets and Spinner Zonke Mystery Parcel. You stand a chance to win a share of 1 million rand in cash and bonus bets. Start your quest and bet 2 rand or more on selected Playtech slots every Wednesday between 2:30 p.m. and 8:30 p.m. and Sunday from 4:30 p.m. to 10:30 p.m. What scintillating secret will your parcel reveal? Bet now. T's and C's apply. Hollywood Sportsbook is a licensed betting operator. No persons under the age of 18 years are permitted to gamble. Winners know when to stop. South African Responsible Gambling Foundation toll-free counseling line 0800 006 008, or WhatsApp help to 0766 75 0710.
2: Get ready for Jayashree's Revive's Big Eastern Fashion Sale. Buy one, get one free on selected saris, Punjabis, lehengas, men's and kids' wear. Or get 20% off store-wide. Jayashree's Revive's, Springfield only.
0: Yes, you are with Ibi Mahmood, and it's 1838. Aapke gulzare takhayulat ko مزید مہکانے کے لیے بھی محمود حاضر ہے، اس خوبصورت شام کا خوبصورت تحفہ گلدستہ لیے ہوئے۔ آئیے اب لیٹس لسن ٹو اندر آرٹسٹ، اینڈ ہی از اے نیو آرٹسٹ آن لوٹس ایف ایم، علی خان ان کی دس ہز نیم، اینڈ ہی از کریٹنگ ویوز ان دا ورلڈ آف غزل۔ سو لیٹس لسن ٹو علی خان۔